अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयो महारानी की, सद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

0: जगी
1: जय
0: जय श्री राम
1: जय श्री राम
0: जय जय श्री राम
1: जय जय
0: जय जय श्री राम
1: जय जय
0: नमः पार्वती पदे।

श्री गोविंद गीता अध्याय दो सांख्य योग। अश्रुपूरित नेत्रों से शोकमग्न अर्जुन अतिशय व्याकुल एवं व्यथित है। इन विषम परिस्थितियों में वह श्री कृष्ण का शरणागत शिष्य होना स्वीकार करता है तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी एवं धर्मनिष्ठ उपदेश हेतु विनती करता है। श्री कृष्ण उस ज्ञानामृत की वर्षा करते हैं जो संपूर्ण गीता के सार स्वरूप 72 सूत्रों के इस अध्याय में समाया है। आइए इस दिव्य ज्ञान की सरस संगीतमय साधना करें।

सेनाओं के मध्य युद्ध विमुख वह शोक से स्तब्ध अर्जुन के सभी तर्कों को मात्र मोहजन्य बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवित मृत का शोक करना महज अज्ञानता है। मधुसूदन कहते हैं

श्री भगवान आत्मा एवं देह के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि भौतिक देह असत है, नाशवान है, परंतु आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, शाश्वत है। यह भौतिक देह तो वस्त्र की भांति है, जिन्हें पुराना होने पर बदल दिया जाता है। ऋषिकेश कहते हैं।

हे अर्जुन, युद्ध से विमुख होना अपने स्वधर्म का त्याग करना है। इस अज्ञानता पूर्ण कृत्य से तुम मात्र अपयश एवं उपहास के पात्र बनोगे। अतः युद्ध के लिए तैयार हो।

श्री भगवान अपने शरणागत शिष्य को स्थिर बुद्धि के साथ फल आसक्ति से विहीन निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। जनार्दन कहते हैं।

कुरुनंदन अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, समाधिस्थ की क्या भाषा है? प्रत्युत्तर में मधुसूदन कहते हैं कि काम, इच्छा, राग, भय व क्रोध से मुक्त, शुभ अशुभ, सुख दुख व हानि लाभ में एक समान रहने वाला आत्मसंयमी योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय लीन पुरुषों में क्रमशः काम, क्रोध, मोह एवं स्मृति भ्रम उपजते हैं, जिससे बुद्धि नाश एवं अधोपतन हो जाता है। श्री गोविंद के शब्दों में

0: पुनस्यसुते देवी यमुने त्वं महानदी ऋषि सिद्धि सुरैर्जुष्टे गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते।
1: मैं उपत्यका यमुना यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री में आपका स्वागत करती हूँ। ये बाहें फैलाकर भारत भूमि की रक्षा करता पर्वतराज हिमालय और इसके विशाल वक्ष पर मोतियों की लड़ियों की तरह झूलती नदियां, तेज दूध की सिधार गंगा की और दुबली पतली दुधारा यमुना की। यमुना जो पहाड़ों में पहले जन्म लेने के नाते गंगा की बड़ी बहन है। तो यहाँ की कहानी सुनोगे? उत्तर दिशा में हिमालय की कोख से यमुना के जन्म की, यमुनोत्री की।
2: यम की बहन यमी सूर्य और संज्ञा की पुत्री थी। यमी के जन्म से पहले ही संज्ञा के किसी अनाचरण पर सूर्य ने उसे श्राप दिया था, तेरी पुत्री धरती पर एक उच्छृंखल नदी बनकर जन्म लेगी।

0: यमुना यमुना बनी, लेकिन सामान्य नहीं रही। यमुना की गाथा द्वापर से भविष्य तक संस्कृति, इतिहास और संस्कार का पर्याय बन गई। लेकिन जो भी गंगोत्री और हिमालय में स्थित अन्य धामों की यात्रा कर यमुनोत्री पहुंचता है, उसे पहली बार में तो निराशा ही लगती है। सुप्रसिद्ध लेखक श्री विष्णु प्रभाकर को भी कुछ ऐसा ही लगा था, किंतु फिर
1: हिमालय के चार प्रसिद्ध तीर्थ हैं, यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों में गया हूं। यमुनोत्री में जब पहुंचा था, भयानक मार्ग को पार करता हुआ, तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। तो ये सूर्य की बेटी है और यम की जो भगनी है, वहां मानसल सौंदर्य की आशा करना व्यर्थ होता है। यमराज ने अपनी बहन की रक्षा के लिए जो चारों तरफ पहाड़ खड़े किए हैं, वो वैसे ही हैं जैसे यमदूत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, तो घाटियों में देखा कि पत्थरों के बीच में से कल कल छल छल की आवाज आ रही है और बीच में से हल्का हल्का पानी उछलता उछलता चला जा रहा है। तो उसी की तरफ देखते देखते मेरी दृष्टि फिर उधर गई, ऊपर दूर, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बंदरपूछ उसका नाम है, उसकी एक कहानी है। तो उस बंदरपूछ पर्वत से यमुना का उद्गम होता है। तो मैंने देखा कि वहां से बहुत ऊपर देखने पर दो धाराएं हैं जो फुहार की तरह से उड़ रही हैं। बड़ा सुंदर लगता है वो फुहार उड़ना। एक का नाम है कालिंदी, एक का नाम यमुना। नीचे आकर वो दोनों की दोनों मिल जाती हैं और पत्थरों के बीच में से होती भी चलती हैं। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यमुना का कोई बहुत बड़ा वैभव है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही गरुड़ गंगा अथाह जलराशि लेकर के उसमें समा जाती है। तब जो है यमुना का असली रूप प्रकट होता है। श्याम वर्ण है यमुना का, वहाँ श्याम जल है, और फिर वो पूरे उद्दाम वेग से आगे चलती चलती चलती चली जाती है।
0: यमुना टिहरी गढ़वाल में 6,330 मीटर ऊंचाई पर प्रकट होती है। कलिंद पर्वत से आगे चलकर कालिंदी में ऋषिगंगा, उमा, हनुमान गंगा आदि सात धाराएं आ मिलती हैं। 11 झरने इसे बंदरपूत से विदा देते हैं। कलसी में टौंस नदी इससे गले मिलती है, जिसमें यमुना से भी अधिक पानी है। और तब यमुना नाचती, बल खाती, छींटे उड़ाती, झरनों में झरती, घाटियों, चट्टानों, गहरी खाइयों और पहाड़ों में रास्ता बनाती, तेजी से मैदानों की ओर चल निकलती है। धर्माधिकारी डॉक्टर विद्याधर यमुना के इस वेग की शास्त्रोक्त व्याख्या करते हैं।
2: यमुना के स्वरूप के विषय में सबसे प्राचीन सामग्री अर्थात ऋग्वेद संहिता के एक मंत्र को लेते हैं, जिसकी व्याख्या में यास्क ने, जो कि ईसा पूर्व 6 शताब्दी में हुए हैं, बहुत अच्छा स्वरूप हमारे सामने रखा है। यमुना के संबंध में इसमें प्रयुवति गच्छति तिवा, ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। अनेक नदियों से यह मिलती रही, फिर भी अपना अस्तित्व इसने कभी भी नहीं खोया। इसको देख करके युवती के दर्शन से जिस प्रकार आह्लाद या प्रसन्नता या स्फूर्ति उत्पन्न होती है, इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते थे, ऐसा यास्क के कथन का सारांश निकाला जा सकता है।
0: शिवालिक की पहाड़ियों में घूमती विचरती यमुना 130 किलोमीटर लंबी पर्वतीय यात्रा के बाद फैजाबाद में मैदानों में प्रवेश करती है। खनिज, औषधियों और उपजाऊ मिट्टी से भरा मंगल घट अब यमुना खेतों में उलग देती है। इस जल की बाहें दूर दूर तक फैलाने के लिए इससे दो महत्वपूर्ण नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर, जो अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार आदि जिलों को सींचती है। इस नहर का काम 500 वर्ष पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ करवाया था। तब से आज तक ये कई बार बंद होती, खुलती, दूर तक फैले खेतों में हर

उसी स्थान पर लगभग 200 वर्ष पहले पूर्वी यमुना नहर निकाली गई, जो दोआब नहर कहलाती थी। आज ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के विस्तृत इलाकों को सींचती है। पानीपत के युद्ध देखती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती यमुना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शस्त्रों की झनकार और पार्थसारथी कृष्ण का गीता का उपदेश अपने अंदर समोती है। इसके दूसरे तट से कुछ ही दूर है मेरठ, जहां 1857 में मंगल पांडे ने देश की आजादी का पहला बिगुल फूंका था।

0: और यही सब देखती समझती रीछती खींचती यमुना आ पहुंची है 7 बार उजड़ने और बसने वाली दिल्ली में। यहां अब मैं उपत्यका आपसे विदा लेती हूं।
1: मैं रोशन हूं, दिल्ली से मथुरा तक की यमुना यात्रा में मैं आपके साथ चलूंगा। कभी इंद्रप्रस्थ कहलाने वाली दिल्ली का इतिहास शक्ति की होड़ का इतिहास है। इसी के किनारे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासु की रचना की थी और इसी यमुना नदी की छाती पर पृथ्वीराज संयोगिता के फूलों लदे रंगीन बजरे तैरा करते थे। उसी पृथ्वीराज के चढ़ते सूर्य को खून में नहलाकर जब मोहम्मद गोरी ने अपने 16 पराजयों का बदला दिल्ली से लिया तो यमुना उसके घावों पर शीतल जल छिड़कने के अलावा कुछ भी न कर पाई। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश सबका इतिहास बांटती रही यमुना इब्न बतूता के साथ कि आप पहुंचा तैमूरलंग। गांव कूचे खेत खलिहान महल झोपड़े उजाड़ता दिल्ली के खून से यमुना का पानी लाल करता।

0: लेकिन शेरशाह के बाद दिल्ली का भाग्य फिर जगा। यमुना फिर से राग रंग में नहा गई। शाहजहां यमुना का मतवाला हो गया। लाल किले के दीवाने खास से लेकर पूरे चांदनी चौक में यमुना नहर बहने लगी। बहादुर शाह जफर और अनेक दिग्गज साहित्यकारों ने एक नई तहजीब, एक नई भाषा, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नई इबारत गढ़ी। और बहुत कुछ होता रहा है यमुना के किनारे दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर शमीम हनफी के शब्दों में,
1: यमुना का जिक्र उर्दू में यानी गद्य और पद्य दोनों में कई लेवल्स पर आया है, कई स्तरों पर आया है। एक तो जैसे यमुना एक नदी के तौर पर, एक फिजिकल फिनोमेना बिल्कुल, ये कि जो एक दृश्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा है यमुना एक सिंबल के तौर पर, सिंबल ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी, और ये मतलब टाइम को एक तरह से एक टाइम में सफ़र करती हुई एक सच्चाई उसके सिंबल के तौर पर। तीसरा एक यमुना एक आर्किटाइपल इमेज के तौर पर, और चौथा है कृष्ण भक्ति के एक इशारे के तौर पर। तो इस तरह के कई लेवल्स मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो समझिए कि जब से उर्दू शायरी की तारीख शुरू होती है अब तक आप देखें तो ये सिलसिला जारी है।
0: और फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने आठवीं दिल्ली बसाई, नई दिल्ली। अंग्रेजों की दिल्ली के प्रमाण हमें कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली अभिलेखागार के अनेक चित्रों में मिलते हैं। आजादी की लड़ाई में दिल्ली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्त्रों की होली से लेकर शहीद हो जाने तक का

0: इतिहास रचा। यमुना ने फिर देखा सदियों की गुलामी का सूर्यास्त और स्वराज का सूर्योदय।
1: आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आई। दिल हमारा खुश होता है एक मंजिल पर हम पहुंचे, ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है।
0: और इसी दिल्ली में एक भारतीय ने ही बापू के प्राण हर लिए थे। यमुना के किनारे ही बनी है महापुरुषों की समाधियां, जहां देश का इतिहास सो रहा है। अगर हम कहें कि आधुनिक युग में नवी दिल्ली बस रही है तो अतिशयोक्ति न होगी। अभी तक यह शहर मुख्यतः यमुना के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था, अब कई पुलों से जुड़ा उसका पूर्वी किनारा ऊंचे नीचे मकानों के समूहों से पटता जा रहा है। आजकल इसके दोनों किनारों को जोड़ता 16 ट्रैक वाला देश का सबसे बड़ा पुल निर्मित हो रहा है और पुलों की भी योजना है। आबादी के विस्फोट के साथ साथ यमुना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ओखला से वजीराबाद तक अनेक नाले प्रतिदिन 55 करोड़ लीटर गंदगी उलीच रहे हैं। यमुना में पानी की कमी होते देख छोटी बहन गंगा को दिल्ली लाया गया। तेजी से बढ़ती बहुसंख्यक प्यास का अंत कहां जाकर होगा? क्या गंगा यमुना मिलकर भी जरूरत भर स्वच्छ पीने योग्य पानी दे पाएंगी?

0: मैं श्यामा हूँ, मथुरा की रहने वाली। यमुना नदी से भेंट करने मैं शहर से दूर कछारों पर निकल आई हूँ। वो आ रही है यमुना, हिंडन नदी का जल साथ लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती। देख रही हूँ कि मैया किस तरह जनजीवन को पाल रही है। काछी, कुमार, मल्लाह, धोबी, रेती ढोने वाले सभी अपने पेट पालन के लिए यमुना पर निर्भर हैं।
1: अच्छा, ये यमुना जी से आप लोग ये कपड़े धो के कितनी कमाई कर लेते होगे महीने में एक परिवार?
2: मतलब है साहब, कमाई तो इसमें कुछ नहीं है, मेहनत ज्यादा। हमको जो 20 रुपए रोज भी नहीं पड़ते, 3 दिन यहाँ पर लगे रहते हैं, माए बाल बच्चों समेत।
1: भैया आप तो यह नाव चलाते हैं, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम भूलाल।
1: अच्छा, ये यमुना मैया तो आपका पेट पाल रही हैं, परिवार का पेट पाल रही हैं, तो कैसे आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं?
3: संतुष्ट होने वाला तो ऐसा संतुष्ट तो होते हैं हम लोग, अगर यमुना में पानी पूरी तौर से 7 तरीके से अगर पानी रहे तो यात्री परदेसी आए तो हमारा धंधा रोजगार भी थोड़ा चले और उसके चलने के साथ साथ हमारे बच्चों का भी पालन हो।
1: तकरीबन एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी?
3: कमाई का तो सरकार ऐसा है कि यमुना में अगर साफ सफेद अच्छी तरीके से बनी रहे तो हम लोगों का पेट पालन हो सकता है।
0: पूरे देश में नदियों के अद्भुत चित्र व मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा राजकीय संग्रहालय की निदेशक श्रीमती पुष्पलता ठकुरेल यमुना की कला छवियों का वर्णन इन शब्दों में करती हैं।
4: हमारे यहाँ नदियों को पवित्र देवियों के रूप में प्रारंभ से ही पूजा जाता है। यद्यपि कला में इन देवियों का अंकन बहुत बाद में हुआ है और मथुरा कला में यमुना का अंकन गुप्तकाल एवं विशेषकर मध्यकाल में हुआ है। एक पैनल हमारे संग्रहालय में ऐसा है जिसे कृष्ण जीवन के कथानक से हम जोड़ते हैं, उसमें यमुना को

सप्त नदी के रूप में प्रदर्शित किया है। यमुना को देवी के रूप में मध्यकालीन द्वार शाखाओं पर दोनों किनारों पर एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना का अंकन किया जाता था। इन पर यमुना को स्त्री रूप में मानवीकरण रूप देते हुए पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित ऊपर से यानी कि सिर से लेकर पैरों तक वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित दिखाया है। जिस प्रकार कलाकार गंगा को प्रदर्शित करने के लिए मगर का अंकन करता है, उसी प्रकार यमुना का वाहन कच्छप दर्शाया गया है। कभी कभी यमुना को कमल नाल लिए भी दिखाया है। यमुना की मध्यकालीन कुछ प्रतिमाएं हमें महावन के जैन 84 मंदिर से मिली हैं। ऐसी कोई प्रतिमा मैंने अभी नहीं देखी जहां इन देवियों को बैठे दर्शाया गया है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, पूरी की पूरी ब्रजभूमि यमुना का स्पर्श पाकर आम्रकुंजों, करील की झाड़ियों, कृष्णचूड़ा, जवाकुसुम, चंपा और कदम्ब के झुरमुटों की रम्य स्थली बन गई है। यहाँ आकर कृष्ण, राधा और यमुना एकाकार हो उठते हैं। द्वापर की स्मृतियां कलयुग का द्वार खटखटाने लगती हैं। इस पुरातन तीर्थ भूमि के पास ही स्थापित किया गया है आधुनिक विकास का तीर्थ तेल शोधक कारखाना। यमुना के किनारे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। अब मैं श्यामा सूरकुटी में यमुना मैया का एक बार फिर स्वागत करने और यहाँ की महिमामयी धरती से आपका परिचय कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। सूरकुटी से आगरा कुल 22 किलोमीटर ही तो है। यहाँ भक्त कवि सूरदास ने कुटी बनाई थी और मान्यता है कि सूर सागर के अधिकांश पद यही यमुना तट पर रचे गए। यहाँ पर सूर स्मारक संस्थान ने एक अंध विद्यालय और विद्यार्थी निवास की व्यवस्था की हुई है।

0: यमुना जी के किनारे किनारे बढ़ती मैं सिकंदरा और अमर सिंह राठौर का अश्व स्मारक देखती 450 साल पुराने आगरा शहर के किले पर आ पहुंची हूँ। यहाँ ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहाँ की लाल दीवारों में हुमायूं का परपोता शाहजहां वर्षों अपने बेटे औरंगजेब की कैद में रहा। यहीं से वो देखा करता था यमुना पार अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल का अमर स्मारक ताजमहल। मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया? पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री शंकरनाथ कहते हैं,
1: अपने साम्राज्य को बढ़ाने, उसकी सुचारू रूप से देखभाल करने, ट्रेड अथवा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्हें यह स्थल ज़्यादा उपयुक्त लगा। उनको आगरा में जमुना जैसी एक ऐसी नदी मिल गई जिससे वो यहाँ बैठ करके सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि यहाँ से बंगाल तक आवश्यकता पड़ने पर नौकाओं के द्वारा मुगल सेनाएं यहाँ से बंगाल तक धावा मारती थी अथवा यहाँ से उत्तर की तरफ देहरादून के इलाके तक जाती थी।
0: मथुरा से आगरा के बीच की भूमि अनेक धर्मों और संस्कृतियों के मिलन की भूमि रही है। डॉक्टर ब्रिजवल्लभ मिश्र,
2: ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन साहित्य को देखने से लगता है कि यमुना उस समय इसका सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था और फिर यहाँ मथुरा नाम बनने से पूर्व ही जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हो गया। जैन धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने और

0: श्यामा यमुना यात्रा में आगरा तक आई और उससे आगे की यात्रा में मैं आपके साथ हूं। मेरा नाम तीर्थराज है। प्रयागराज संगम तक पहुंचते पहुंचते अनेक नदियां यमुना में आकर मिल जाती हैं। बेनगंगा, सेंगा, चंबल, जो अपने साथ क्षिप्रा, काली सिंध और बनास की जलांजलि लाई थी। इटावा के पास जयचंद और शहाबुद्दीन गोरी की मुठभेड़, कालपी के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और तांतिया टोपे का साहस, सब यमुना ने देखे। कालपी से आगे बेतवा और केन नदियां उसमें आ मिली हैं। यमुना का वेग बढ़ गया है, वह गंगा से मिलने को आतुर है। लेकिन एक छोटा सा गांव कोसम, जो कभी वैभवशाली कौशाम्बी था, बस अब खंडहर बचे हैं और बची है अशोक की एक अकेली लाट, यमुना की यादों की साक्षी। अब आ गई यमुना राजापुर में। भक्त शिरोमणि तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना भूमि, इतिहास जैसे अतीत है, उसी तरह यमुना की 1306 किलोमीटर की यात्रा भी अतीत होने जा रही है। बड़ी बहन यमुना अपना अथाह श्याम जल गौरवर्णा गंगा को सौंप कर विलीन हो रही है। यमुना, गंगा और गुप्त सरस्वती, तीनों का मिलन शतकू बीच तीर्थ बन गया है। श्री केशव चंद्र वर्मा,
1: युवराज साहब ऐसी बातें कहते थे कि जो सूत्र के रूप में होती थी, उन्होंने एक बार ये कहा था कि गंगा यमुना की जो द्वाबे की संस्कृति है, सच पूछो तो यही भारतीय संस्कृति की मूल है। इसी के आधार पर हम हमेशा भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसके अलावा इस देश में घटित हुआ है, वो इसी से कहीं न कहीं प्रभावित है। उसे डॉक्टर रामनर लोहिया ने भी कहीं कहा है, यमुना का वर्णन करते हुए, कि वह रस की नदी है। कृष्ण और राधा का जो भारतीय प्रतीक है, वो यमुना को ही समेट कर चलता है। यमुना के किनारे किनारे प्रयाग तक बहुत कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें उस संस्कृति की अनेक छवियां जगह जगह अंकित हैं।
2: मैं कलिंग सुता हिमालय की गोद से निकलकर यहां वहां पहुंची हूं। थम गई है जैसे मेरी यात्रा, रुकी हुई हूँ गहरी धीर चुपचाप और हर हराती हुई आ रही है उज्ज्वल वर्णी गंगा बहन। हम दोनों मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और नीचे नीचे बह रही है बहन सरस्वती। हम तीनों का ये मिलन कैसे पवित्र न होता, कैसे न बन जाता ये स्थल तीर्थराज प्रयाग।
0: संगम के इस पवित्र मिलन को साक्षी बना माता कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया था, अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लगे गंग जमुन की धारा। शाश्वतता के इस प्रमाण को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उनकी चर्चा श्री प्रमुख

0: कुमार अग्रवाल ने की, जो गंगा कार्य योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक हैं।
1: गंगा निर्मलीकरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को सहायता देने के लिए जापान सरकार आगे आई है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमें आशा है कि शीघ्र ही मथुरा, वृंदावन, आगरा और हरियाणा एवं दिल्ली में भी इस दिशा में कुछ काम होगा। जहाँ तक इलाहाबाद का सवाल है, मैं यह कहूँगा कि जैसे नदियाँ समाज की शिराएं हैं, उसी प्रकार से सीवर शहर की धमनियाँ हैं। तो जब तक सीवर लाइनें साफ रहेंगी, लोग इन्हें गंदा नहीं करेंगे, इनमें कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, तो निश्चय ही यह गंदगी पंपिंग स्टेशन तक जाती रहेगी और हम इसे निरंतर पंप करते रहेंगे और नदियों में मल जल जाने से रुकेगा, जिससे कि शहर का स्वास्थ्य लाभ होगा और हमारी नदियां भी स्वच्छ होंगी।
2: इममे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्रिस्तोमं सचतापरुष्ण्या ओसिकन्याम रुद्रभे वितस्तयार्जी की।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना

को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: श्रोताओ, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि सती दाह से क्रुद्ध हुए भगवान शिव शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, उन्हें दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध के बाद वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला, उसका सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष वध के बाद सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति रुक गई। चिंतित ब्रह्मा और विष्णु देवाधिदेव शिव के पास गए, उनसे दक्ष को क्षमा कर फिर से जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनका अनुरोध मान लिया, स्वयं जाकर दक्ष को जीवित कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। जब असुरों ने देखा कि भगवान शिव अखंड ध्यान में मग्न हैं, तो उनका साहस बढ़ने लगा और वे धीरे धीरे अपना सर उठाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए।
2: तो क्या अपनी प्रजा के बढ़ते कष्टों को देख परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया?
1: किया क्यों नहीं शौनक जी, उनके हाथों अनेक दुर्दम्य असुरों का वध हुआ, परंतु असुर श्रेष्ठ तारकासुर उनके वश में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके गले तक पहुंचकर पुष्प माला बन गया था। वो तीनों लोगों को जीतकर उनका स्वामी बन गया था।
2: आश्चर्य है महाज्ञानी सूत जी, तारकासुर इतना बलशाली कैसे बन गया?
1: तारकासुर ने एक समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर दे दिया था।
3: नारायण नारायण, विधात आपके वरदान के कारण ही तो तारकासुर अजय बन गया है।
4: पुत्र नारद,
5: हम भगवानों की तो प्रकृति ही है अपने भक्तों को सुखी बनाना। हम सब भक्तों को स्वच्छ मन से वरदान देते हैं उनके हित के लिए।
3: परंतु परमपिता, कभी कभी आपका कोई भक्त आपके वरदान को ही अपना अस्त्र बना लेता है, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर डालता है।
6: मुने नारद, हम हर एक जीव को उसके जन्म के समय मस्तिष्क देते हैं। उस मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं भरते। उसका कैसे उपयोग करना है यह हर एक प्राणी का निजी अधिकार होता है।
5: हमने प्राणियों के लिए तीन गुण बनाए हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब ये प्राणी के मस्तिष्क पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण अपनाता है। जो जैसा गुण अपनाएगा वैसा ही व्यवहार भी करेगा।
3: किंतु श्री हरि, सृष्टि का संचालन तो आपके हाथों में है।
6: है, अवश्य है, परंतु प्राणियों का मस्तिष्क हमारे अधीन नहीं है। यदि अधीन होता तो देवता, मानव और असुर में भेद क्यों होता? सभी सत्कर्म करते

0: हुए सत्य के ही पथ पर चलते तो आज हमें तारकासुर के दुष्कर्मों से पीड़ित होकर उसके विनाश की बात न सोचनी पड़ती।
1: हे विधि, जब आपको ज्ञात ही था कि असुर उत्पाती हैं, तो प्रभु उनको पैदा ही क्यों किया?
0: मुने नारद, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विविधता आवश्यक है, नहीं तो हर पेड़ पौधे का एक ही आकार होता, हर मानव मानवी सुर असुर सभी का एक ही रूप होता। कल्पना करो, जीवन कितना नीरस होता।
1: परंतु असुरों द्वारा ये विध्वंस तो आप रोक सकते थे प्रभु।
2: महानिर्माण से पूर्व महाविध्वंस आवश्यक होता है। जितना ऊंचा और बड़ा भवन निर्माण करना हो, उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। समतल भूमि पर अट्टालिकाएं बना पाना संभव नहीं है।
3: और पुत्र, जैसे निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक है, वैसे ही विध्वंस के लिए निर्माण आवश्यक है।
1: नारायण नारायण, प्रभु आप किस निर्माण की योजना बना रहे हैं?
3: शिव पुत्र की उत्पत्ति की योजना नारद।
1: शिव पुत्र? प्रभु आप ये असंभव।
3: तारकासुर और उसका वंश उन्हीं असुरों में से है जिन्हें मात्र शिव पुत्र ही मार सकता है।
1: किंतु देवी सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव होगा?
3: पुत्र, सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए असंभव को संभव बनाना ही होगा।
1: परंतु कैसे परमपिता?
3: सदा शिव का दूसरा ब्याह रचाकर।
0: परंतु विधे, भगवान शिव शंकर तो गहरी तपस्या में लीन हैं, तंद्रा भंग होने से क्रोधित भी हो सकते हैं।
3: हाँ भगवान, हो सकता है। और ऐसा ना भी हो तो भी प्रश्न ये उठता है कि लीलाधर भगवान शिव शंकर की पत्नी कौन होंगी?
0: महाप्रभु, महाप्रभु माता शिवा के अतिरिक्त किसी और को तो स्वीकार भी नहीं करेंगे, अब उन्हें ही पुनः अवतार लेना होगा।
3: परंतु इस बार किस रूप में लक्ष्मी पते?
0: ये विचारणीय है।
1: नारायण नारायण नारायण। प्रभु विष्णु, आपके श्वेत द्वीप में शीघ्र ही एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है।
0: हाँ नारद।
1: और परम पिता, आपके मानस पुत्र सनत कुमार इस संगोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं प्रभु।
0: तो
1: प्रभु, दक्ष राज ने अपनी पुत्री स्वथा का विवाह पितरों से किया था। उनकी तीन मानस पुत्रियां हैं, मेना, धन्या और कलावती। तीनों ही परम विदुषी हैं और धर्म की मूर्ति है प्रभु। प्रभु यदि वे इस धर्म गोष्ठी में आ जाएं तो
0: तो क्या ऋषिवर नारद, आप क्या लीला रचने जा रहे हैं?
1: नारायण नारायण।
4: परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद, संतों के समागम में स्त्रियों का क्या काम?
1: नारायण नारायण, ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये अयोनिजा अवश्य हैं, परंतु लोक व्यवहार में ये स्वधा पुत्रियां ही मानी जाती हैं। ये तीनों ही परम योगिनी और ज्ञानी हैं।
4: अच्छा,
1: हाँ,
4: इनका धर्म ज्ञान तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। देवी मेना, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके उत्तर ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आप इस संत समागम में भाग लेने योग्य हैं या नहीं।
5: पूछिए सनत कुमार।
4: भक्ति के कितने अंग होते हैं देवी मैना?
5: भक्ति के 9 अंग होते हैं देव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण।
4: उत्तम, अति उत्तम। इनके स्वरूप क्या होते हैं देवी?
5: सनत कुमार, सबसे पहले है श्रवण, अर्थात प्रभु लीलाओं की कथाएं सुनना, और फिर कीर्तन, अर्थात उच्च वाणी में

0: प्रभु के गुणगान करना, भजन आदि करना। और तीसरा है स्मरण, अर्थात प्रभु को सर्वव्यापी मानकर सदैव निर्भय रहना।
1: और सेवन देवी?
0: हृदय और इंद्रियों से प्रभु की सेवा को सेवन कहते हैं। प्रभु को किनकर समझकर उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना दास्य कहलाता है। इसी प्रकार

0: इष्ट देव को साष्टांग करना वंदन होता है। ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मंगल के लिए ही होता है, सख्य भक्ति का स्वरूप है। और देह समेत अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचा के रखना आत्मसमर्पण कहलाता है।
1: आपने सिद्ध कर दिया देवी मैना, सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षित स्त्री धर्माचरण जानती है, अतः वो पुरुषों के साथ संत समागम में हिस्सा ले सकती है।
2: नारायण नारायण नारायण।
0: क्षमा करें ऋषि सनत कुमार, केवल शिक्षित ही नहीं अशिक्षित स्त्री भी धर्माचरण जानती है। पतिव्रत धर्म से बड़ा धर्माचरण भला और कौन सा हो सकता है?
1: हम समझे नहीं देवी मैना, व्याख्या कीजिए देवी।
0: मुनिवर, धर्माचरण के लिए आप मुनियों को बटना तो नहीं पड़ता, परंतु पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली नारी को भिन्न भिन्न रूप लेने पड़ते हैं। कभी वो पति की प्रेयसी बनती है तो कभी सेवा करने वाली दासी, कभी वो पति की वंश परंपरा चलाने के लिए जननी बनती है तो कभी पति का अपमान करने वाले के लिए दुर्गा। इस पत्नी धर्म के अंतर्गत कितने ही अन्य धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। स्त्री अगर ये धर्माचरण छोड़ दे तो उसका परिवार टूट जाता है।
1: धन्य है आप, धन्य है देवी मैना।
2: नारायण नारायण नारायण।
1: मैं बहुत प्रसन्न हुआ देवी मैना, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको तथा आपकी दोनों बहनों धन्या तथा कलावती को आशीर्वाद देता हूं।
3: ज्येष्ठा मैना, आप हिमगिरी राज हिमवान की पत्नी बनेंगी और आपकी पुत्री पार्वती के नाम से विख्यात होगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
3: योगिनी धन्या, आप राजा जनक की पत्नी होंगी। आपके यहां स्वयं महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और कलावती, आप द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी। आपकी पुत्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होंगी।
2: नारायण नारायण नारायण।
4: आइए हमारे वाम में विराजिए, महाप्रभुओं के आदेश से दुर्गा स्तुति आरंभ करते हैं।

0: माते, जगत जननी, आपके दर्शन मात्र से ही हृदय के सभी क्लेश धुल गए हैं।
1: हे शिवलोक निवासिनी, आपने हम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है।
2: हे कल्याणकारी शिवा, आपके चरण का स्पर्श

0: पाते ही ये समस्त हिम प्रदेश पवित्र हो गया है।
1: माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रसन्न रहो हिमवान पत्नी मीना। ब्रह्मदेव, आप भविष्य वक्ता हैं। आप मुझसे किस भविष्य की अपेक्षा रखते हैं?
2: माते, आप सर्वज्ञ से कुछ भी कहना सूर्यदेव को दीप दिखाने जैसा होगा। फिर भी अंबे, हम सबका आपसे एक निवेदन है।
1: निसंकोच कहिए देवगण।
3: माता शिवा, सती रूप में आपके अवतरण से समस्त जगत प्रसन्न और निश्चिंत हो गया था, परंतु पिता द्वारा पति के तिरस्कार के कारण आपने देह त्याग कर दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि शोक में डूब गई है माते। स्वयं महादेव विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए हैं माते।
2: अंबिके, आपके स्वधाम पधार जाने से देवताओं का मनोरथ अपूर्ण रह गया है। वे अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। सब ओर असुर राज स्थापित हो गया है। तीनों लोकों के जीव व्याकुल हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
3: और माते, इस विपदा का एक ही निराकरण है, शिव पुत्र की उत्पत्ति।
2: और ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है जगदम्बे।
1: तो आप सबकी क्या इच्छा है?
4: माते, माते, आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर तीनों लोकों के वासियों को असुरों से मुक्ति दिलाएं।
0: माते, आप पुत्री के रूप में मेरे यहां अवतरित हों।
3: शिव पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करें माते, जो हमसे वरदान प्राप्त कर असुरों का नाश करे।
1: ऐसा ही होगा विष्णु हरि। परंतु मीना।
4: आज्ञा महादेवी।
1: इसके लिए तुम्हें आने वाले चैत्र मास से 27 वर्ष की तपस्या करनी होगी।
4: जो आज्ञा माते। परंतु माँ।
1: कहो मीना, मन में कुछ ना रखो।
4: माते, मुझे वर दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो, जो असुरों का विनाश करने में सक्षम हो।
1: तथास्तु। मीना, तुम मेरे अवतरण से पूर्व 100 बलशाली पुत्रों को जन्म दोगी। उनमें सर्वोत्तम होगा मैनाक। उसके पश्चात मैं पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी। तुम उसका नाम पार्वती रखना। पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री।
2: आप धन्य हैं महादेवी, धन्य हैं।
0: आपने अपने भक्तों पर असीम कृपा की है माते।
3: हम आपके सदा से ही ऋणी रहे हैं माते।
0: आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं।
5: महाज्ञानी शौनक जी, ये वरदान देकर महादेवी शिवलोक लौट गईं। देवी मीना ने महादेवी की आज्ञा से 27 वर्ष का तप आरंभ किया। महादेवी के आशीर्वाद से मीना को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ था मैनाक।
6: परंतु महाभाग, तीन लोकों के प्राणी तो बड़ी आतुरता के साथ पार्वती जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
5: हाँ शौनक जी, देवी शिवा के आशीर्वाद से हिमवान के घर एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया। महादेवी के आदेश पर ही उसका नाम पार्वती रखा गया। चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। घर घर मंगल वाद्य बज उठे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
6: ये सब तो स्वाभाविक ही था। तारकासुर संहारक की जननी ने जो जन्म लिया था।
5: हिमवान पुत्री पार्वती वर्षा में गंगा की जलराशि की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव भक्ति की प्रबल भावना थी। वो हिमवान के घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ जाती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। एक दिन उनकी भक्ति से विभोर होकर नारद मुनि बालिका पार्वती के दर्शन को वहां पहुंचे।
7: नारायण नारायण नारायण।
0: महर्षि नारद,

0: आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दें।
1: नारायण नारायण, गिरिवर हिमवान, स्वयं जगदम्बा को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे तो इनके दर्शनों की अभिलाषा यहाँ खींच लाई है।
2: महर्षि नारद, आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताइए।
1: देवी मैना, आपके घर में तो स्वयं शिवा ने जन्म लिया है, भविष्य का निर्माण करने वाली का भविष्य भला मैं क्या बताऊं? फिर भी पुत्री पार्वती, अपना हाथ तो दिखाओ। गिरिराज, आपकी पुत्री की हस्त रेखाएं तो शुभ लक्षण ही दिखा रही है। नारायण, ये माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी, ये परम साध्वी तथा स्वजनों को आनंद देने वाली बनेगी।
2: और पति मुनि श्रेष्ठ,
1: अपने पति को ये अत्यंत सुख पहुंचाएंगी। इसके पति सदा इनकी सेवा से प्रसन्न रहेंगे और इनका आदर सम्मान करते रहेंगे। परंतु ये क्या
2: क्या हुआ मुनि नारद?
1: ये तो बड़ी ही विलक्षण रेखा है।
0: मुनिवर, शीघ्र बताइए क्या अशुभ होने वाला
1: है? नारायण नारायण नारायण, आपने अशुभ की बात कैसे सोच ली? गिरिराज, देवी का कोई अशुभ कर सकता है? बस इनके पति का रंग रूप स्वरूप कुछ
2: बताइए। महामुनि बताइए, रुक क्यों गए?
1: तो सुनिए देवी मैना, इन्हें एक अर्धनग्न भभूतधारी निर्गुण निष्काम सन्यासी पति के रूप में मिलेगा।
2: ये कैसी भविष्यवाणी कर डाली आपने ऋषिवर? मेरी यह सुंदर पुत्री एक कुरूप योगी की पत्नी बनेगी।
1: यही सत्य है देवी मैना, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये विधि का विधान है।
0: परंतु महर्षि, परम पिता ब्रह्मा ने तो ये आशीर्वाद दिया था कि स्वयं देवाधिदेव शिव पार्वती के पति होंगे।
1: नारायण नारायण नारायण, आपको इस आशीर्वाद पर भी संशय नहीं होना चाहिए।
2: परंतु जिस रूप का आपने वर्णन किया है वो देवादिदेव का हो ही नहीं सकता, वो तो अत्यंत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है।
1: नारायण नारायण, आपका कथन भी सही है देवी मैना, परंतु समय और काल कभी कभी व्यक्ति को रूप बदलने को भी बाध्य कर देता है। नारायण, गिरिराज हिमवान,
0: महर्षि,
1: देवी मैना, आप निश्चिंत रहें, पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे। पार्वती जीवन पर्यंत उनकी सहभागिनी बनी रहेंगी। नारायण
3: फिर महामुनि सूत जी, घटना चक्र किस प्रकार घूमा?
4: शौनक जी, उत्तम गुरुओं से शिक्षा दीक्षा पाती देवी पार्वती बड़ी होने लगी। यौवन अवस्था में पहुंचते पहुंचते पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी।
3: चिंता? कैसी चिंता सूत जी महाराज? पार्वती जी को वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह शिव से होगा।
4: शौनक जी, पुत्री के विवाह की चिंता पिता के लिए स्वाभाविक ही होती है, और ये चिंता मात्र दरिद्र पिता को ही नहीं होती, सर्वसाधन संपन्न पिता भी इससे मुक्त नहीं होते।
0: सृष्टि रचयिता परम पिता ब्रह्मा को मेरा नमन है।
5: उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्री पार्वती का महादेव से विवाह होना निश्चित है।
0: परंतु कैसे? महादेव ने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग रखा है, उनका समग्र ध्यान इस समय परम ब्रह्म में है, इसी कारण वे देवताओं तक को दर्शन नहीं दे रहे। वे ध्यान छोड़कर विवाह की ओर कैसे उद्यत होंगे? और फिर
5: रुक क्यों गए गिरिवर? कहो और फिर क्या?
0: प्रभु, किन्नरों के मुख से एक और बात भी सुनने में आई है।
5: वो क्या है वत्स हिमवान?
0: कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने दक्ष पुत्री सती से एक प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने वचन दिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का वरण नहीं करेंगे। देवी सती की मृत्यु के पश्चात सदाशिव अपनी ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे?
5: तुम बहुत भोले हो गिरिवर, तुम्हारी पुत्री पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में

0: दक्ष पुत्री सती थी। सती भी शिवा का ही अवतार थी और अब वही शिवा तुम्हारे घर आंगन में अवतरित हुई है। शिव और शिवा का साथ तो चिरंतन है पुत्र, इसलिए पार्वती ही शिव पत्नी होंगी, इसमें संशय की कोई बात नहीं।
1: आपके इन वचनों से मैं चिंता मुक्त हुआ भगवान, परंतु
0: हिमवान अब परंतु कैसा?
1: भगवान शिव तो तपस्या में लीन,
0: तपस्या ही तपस्या की काट बनेगी।
1: प्रभु,
0: महासाधी पार्वती तपस्या करके शिव जी का मन मोह लेंगी, अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर को संतुष्ट कर पार्वती भगवान शिव के आधे शरीर को अपने अधिकार में कर लेंगी।
1: प्रभु,
0: इस प्रकार भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप प्रकट होगा। जाओ वत्स, पुत्री पार्वती से शिव आराधना करने को कहो।
1: छो आज्ञा प्रभु, छो आज्ञा।
2: और शौनक जी, पिता की आज्ञा से देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी।
3: विप्रवर सूत जी, उनकी तपस्या क्या रंग लाई?
2: महाज्ञानी शौनक जी, पार्वती की तपस्या कोई सीधी साधी तपस्या नहीं थी जो शीघ्र ही सार्थक हो जाती। उनका लक्ष्य था महादेव को पति के रूप में पाना। ये लक्ष्य भले ही असाध्य ना हो, परंतु कठिन अवश्य था।
3: आप उचित कहते हैं सूत जी, भोले भंडारी को प्रसन्न करना हर एक के वश की बात नहीं।
2: शौनक जी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे पाने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना होता है। परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
3: तो देवी पार्वती का यह परिश्रम कैसे सार्थक हुआ?
2: शौनक जी, इस विषय को हम अभी यहीं विश्राम करने देते हैं। आगे की कथा कुछ समय उपरांत।

होने तुसी सुन रहे सी सदा बहार गीत मेडियम वेब 343.6 किलो हर्ट्स टीआरएम 854 किलो हर्ट्स एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। स्टूडियो दी कड़ी मुताबक शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुन असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे आं जित्थों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास।

फिर छोड़े अड़ी सती फिर की सार न जानी जे तू मित्र या साडेड़ा।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भइल आगमन आपके दुनिया भइल सनात। हमसे ज्यादा आपके हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

नवरात्र नवदुर्गानी उपासनानो आचे त्रीजो दिवस। आ दिवसना दुर्गा देवी चंद्रघंटा एम कहवाय। ए चंद्रघंटा जी नु आपणे आ रीति ध्यान करीशुं। हीनस्ति दैत्यते जांसी स्वनेना पूर्यया जगत

हे महादेवी, अपनी घंटा जगतमां एना नादथी व्याप्त थईने दैत्योना तेजने नष्ट करे। हे महादेवी, जेम पोताना पुत्रोनी माता रक्षा करे, एम ए घंटा अमोने पापमांथी बचावो, रक्षा करो। चंद्र घंटा शब्दनो अर्थ चंद्रः घंटायाम यस्यात् स एम थाईश, इतले के जेमनी घंटा मा आह्लादकारक चंद्र से ए देवी चंद्र घंटा। ये तो जानी तू छे के घंटनो ध्वनि देव देवियों ने प्रसन्न करतो होईश, आसुरी भावों ने बगाड़ी देश। बौद्ध जैन ईसाई धर्मस्थानों में घंटनो ध्वनि सुमंगल मनाय छे ए जाणीतुं छे। आ चंद्रघंटा देवी ए सिंहना वाहनवाळा छे, दशभुजा छे, अनेक प्रचंड शस्त्रोथी युक्त छे। एमनी घंटा दुर्भावनाओनो नाश करे छे। नाद ब्रह्मनी जाने के तेनाथी अनुभूति थई छे। चालो चालो आ नाद अने दिव्य शब्द आयो त्यारे श्रुतिना मंत्र ने पण आपणे भूलगे सांभळीए। आ संदर्भमां देवी अथर्वशीर्षनो आ मंत्र जोईए।

नमस्ते जगत्तारिणी त्राही दुर्गे। हे मां दुर्गे, प्रचंड अने अदम्य लीलाओ थी बधाय शत्रु दानवों ने जड़ मूल थी आप उखेड़ी नाखनारा छो, दुखों माथी तारनारा। हे दुर्गे, तमोज अमारी एक गति आधार छो, अपने प्रणाम, अपने मां हमारा वंदन। दुम दुर्गायै नमः। अथ विश्वंभरी स्तुति। विश्वंभरी विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसि विश्वं विश्वेश वंद्या।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुको मुनिवर रटे सुर नर करे विलाप सो सुख सहजे पाइये सदगुरु संगतिया। एक जीव है एक नाम है

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए।

मन मक्का दिल दुहारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

شاہ شہنشاہ شاہ شہنشاہ گرو گوبند سنگھ کا